0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: एक फूल झरे रे के भो एक फूल झरे रे के भो
3: नेपाली सुपर हिट्स
4: रातो

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यही माँ अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलिना पा छिगु जीवन या पला पला नेपकीमा किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन या त शीतलता किम जीवन या त जीवित यैम अलिना प छेगु जीवन या पला पला न्हि फुकिम किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

0: हिट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
0: एवरी फ्राइडे 12 पीएम।

0: यो बढी महत्वपूर्ण विषय हो न कि अरूले तपाईँको बारे के सोच्दैछन्। यो भनाई हो सन्दीप महेश्वरीको।
1: पुरै एक घन्टा तीनवटा मुभीज का सुपरहिट गीतहरू
2: थ्री इन वन
3: एभ्री स्याटरडे 9 AM एन्ड थर्सडे 6 PM
4: Best romantic Hindi song.
5: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं?
4: Every Sunday 9 PM and Tuesday 6 PM
6: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
7: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
8: What's the secret to success?
9: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
9: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
10: You can dance.
11: You can sing. All you gotta do is
12: just tune in.
11: Kips FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
13: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
14: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
15: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पिड र स्टेबल इन्टरनेट
14: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
15: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
13: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
16: 01-42-35-888 98-12-35-888
17: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत Just tune in, radio, naya generation ko.
18: Raja motiwa, moti na yewa, ne puchi chang gutu khele.
19: Nepal bhasha ya, nyai puchi chang meta.
3: Sutheya 6:30 to 7 PM. Station Kips FM 98.3 megahertz.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: listening to Kids 98.3 FM.
1: नमस्कार
2: नमस्कार,
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
3: Enjoy 60s, 70s and 80s Bollywood numbers.
4: Bollywood Golden Hits.
3: Every Monday and Friday 10 p.m. Sunday and Tuesday 4 p.m.
5: Enjoy the cover version of your favorite songs. Cover Mania at 98.3. Cover Mania at 98.3.
3: Every Monday 5 p.m. and Friday 8 p.m. क्लासिक हिंदी पॉप टाइम.
6: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए.
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3.

0: तीस वर्ष देखि इंटरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंग मनसंग जोड़िएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंग
1: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स में पाइन मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाड़ी बस ट्रक एक्सकावेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
4: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
3: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
5: Listen to your favorite classic English songs. Only on English Retro Numbers. English Retro Numbers every Monday 9 p.m. and Wednesday 9 a.m. Station Kips FM 98.3 megahertz.

0: हो गिफ्ट्स 98.3 एफएम तपाई सँगको सहयात्रा
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3
2: शो

0: Kids 98.3 FM. Your companion.
1: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
2: कलियुग टाइम्स एवरी डे 11 to 12 p.m.

0: Countdown show of top 10 English numbers with exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
1: Time Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
0: on KIPS 98.3 FM.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जिप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
6: यु क्यान डान्स
7: यु क्यान सिंग ऑल यु गॉट टु डू इज
8: जस्ट ट्यून इन
9: KIPS FM 98.3 MHz योर कम्पानियन द रेडियो अफ न्यू जेनेरेसन
10: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको

0: यो हो केप्स 98.3 FM तपाई सँगको सहयात्रा
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: The radio station that keeps you cool, alive and entertained. Keeps FM 98.3 MHz, your companion.
1: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
2: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
1: गजल संसार
2: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
3: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Kips FM 98.3 MHz मा
1: एक फूल झरे रे के भो एक फूल झरे रे के भो
2: नेपाली सुपर हिट्स

0: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
1: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
3: This is history of rock.
4: Monday 3 p.m. Only on Keeps FM 98.3 MHz, your companion.
5: Raja Motiwa, Motina Yewa, Ni Pushi Changu Tukhe.
6: Nepal Bhashaya, Nyai Pushi Changmeta.
7: Sutheya Saadhe Chhani Se Saat Baje Taka. Station Keeps FM 98.3 MHz.
8: Keeps FM 98.3 presents Pop Hour.
9: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैंनु प्यार.
8: Every Friday 12 p.m.
10: Yoho Kips FM 98.3 MHz. Mix Max at 90.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Kips FM 98.3 MHz मा
1: कार्यक्रम कॉलीवुड टाइम कॉलीवुड टाइम
0: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: एक फूल झरे रकेबो एक फूल झरे रकेबो
3: नेपाली सुपर हिट्स

0: Wednesday and Saturday, 2 p.m., Thursday, 10 p.m., only on KIPS FM 98.3.
1: Hazur, New Kathmandu Electric Electronics ma paincha motorcycle, scooter, car, van, jeep, pickup, hatti gadi, bus, truck, excavator, ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
6: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
0: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
7: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
0: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
7: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
6: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
8: 01-42-35-888 98-12-35-888
9: KIPS FM 98.3 presents Pop Hour.
10: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
9: Every Friday 12 p.m.

0: Netcom Mazalin Hoss. Our life is always on the happening. Kuru kuru. Connect to my Worldlink and always stay connected wherever you are.
1: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागी गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
3: स्टे कनेक्टेड विथ योर फेभरेट स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज.
4: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
3: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार दिन की 10 बजे
3: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल साथ में सुन्नुहोस् नेपाली र हिंदी सुपरहिट गीतहरू मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे
4: Does your computer UPS has no more backup time as before? Are you looking for battery replacement for your computer UPS? If yes, Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics has a solution for your problem. Protect your computer and hard disk drive from frequent power cuts with reliable sealed maintenance-free, long-life, SMF batteries. Also, we do exchange with your old batteries. Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics, Kulishwar, Kathmandu. Contact number 530-2678. 530-2678.
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
8: What's the secret to success?
9: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
9: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
10: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
11: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 530-2678 530-2678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
12: Stay connected with your favorite station KIPS FM 98.3 MHz
9: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love
12: And don't stop there follow us on Instagram and TikTok too Search KIPS FM 98.3 MHz and hit that follow button today
13: पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका तपाईँ हाम्रो आफ्नै लोक कला र संस्कृति अब एकै थलमा कार्यक्रम प्रत्येक दिन दिउँसो एक बजेदेखि दुई बजेसम्म मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा
14: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज

0: तीस वर्ष देखि इंटरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंक मनसंग जोड़िएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक।
1: अब बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स में 100 एम्पियर 150 एम्पियर 200 एम्पियर का ट्यूबुलर बैटरी सुपथ मूल्य में तपाई का पुराना इन्वर्टर बैटरी को एक्सचेंज सुविधा तपाई का पुराना इन्वर्टर बैटरी ल्याउनुहोस् र नया ट्यूबुलर बैटरी लग्नुहोस् साथै तपाईको इन्वर्टर यूपीएस मरमत समारका लागि सम्झनुहोला।
2: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
3: यु क्यान डान्स
4: यु क्यान सिंग ऑल यु गॉट टू डू इज
5: जस्ट ट्यून इन
4: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
6: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
1: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
7: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
1: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
7: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
6: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
8: 01-42-35-888 98-12-35-888
9: What's the secret to success?
10: Simple. Say yes to radio advertising.
9: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
10: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
9: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
11: काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स एकै छाना मुनि युपिएस इन्भर्टर सोलर उपलब्ध यस पावर सप्लाई सोल्युसन हाउसमा तपाईँको घर अफिसका लागि उपयुक्त सर्टिफाइड सामानहरू उपलब्ध गराइन्छ सोलर होस वा हाइब्रिड सिस्टम बेस्ट प्राइस डिल र कन्सल्टेसनको लागि एक विश्वासिलो नाम
2: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
8: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
12: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
8: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट KIPS FM 98.3

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
1: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
2: यू क्यान डान्स,
3: यू क्यान सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
4: जस्ट ट्यून इन।

0: तीस वर्ष देखि इन्टरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंग मनसंग जोडिएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंग
1: KIPS 98.3 FM your companion.
2: Hollywood Golden Hits.